0: और आपका सिस्टम में डालेंगे नंबर्स, आपको बताएंगे जितनी ग्रांट बनती है, फैमिली फाइव की जैसे ग्रांट बनती है $50,000, लोन बनता है $50,000 अगर आपके तीन बच्चे हैं।
1: सो ए तो नहीं, आई थिंक नागपाल सर माफ करना मैं थोड़ा इंटरप्ट किया, ए तो नहीं कि जे मान लो कि मेरा हूँ $1,00,000 बन गया तो तुम कहो कि नहीं भाई हूँ मैं 599 हूँ तो मैं 2,000 फीस लूंगा, इदा तो नहीं कि कोई फिक्स ही है फीस 199 तो 599।
0: ये शो कम से कम अभी सुन रहे होंगे ना 500 क्लाइंट उसमें से रिटेन होंगे अभी सुन रहे होंगे इस टाइम है ना, तो अब तो शोर मच जाता, AM530 की लाइन तो खुली रहती पूरे टाइम।
1: जी बिल्कुल,
0: मेरे को तो लालच है नहीं, स्टाफ भी सीधा सा है, हमें कोई पैसे का लालच नहीं है, काम होने के बाद हम पैसे लेते हैं $199 या $499। आज ऐसे अराउंड 10-12 बंदों के अकाउंट फंडिंग गिरी है
1: आज, आज किन्ने पैसे वंडे तुसी आज, चलो ये दसो।
0: मैंने नहीं, मैं तो जरिया हूँ, हम जरिया है, हाँ गवर्नमेंट ने 10 से 12 बंदों को अप्रूव करके खाते में फंडिंग डाली है, उसमें से हमारी छोटी सी चीज है जो काम होने के बाद लोगों ने अपनी ईमानदारी से देनी होती, कितनी $200 या $500, वो उनमें से लोगों ने दे दी, 8 बंदों ने, 2-3 ने भी फोन नहीं उठाया, तो मतलब वो उनकी ईमानदारी डगमगा सकती है हमारी, तो बाद में हमारी तो बात ही ईमानदारी की।
1: नागपाल सर मान लो थोड़े को 10 क्लाइंट आते अज ते अपनी असैसमेंट करवाउंदे आ ते उन्होंने विचों गरंटी हुंदी है कि 10 का ही काम हो जाए या उहदे विचों हुंदा कि?
0: क्वेश्चन है,
1: हाँ जी
0: बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मेरे को मतलब बड़ा मजा आएगा आंसर देने में। ओके, अब इसमें क्या चीज है कि ये कोई बैंक तो है नहीं,
1: मेनू नहीं मजा आना, ज्यादा टाइम लगना मेरे को, टाइम घट जी आंदे हो।
0: बैंक तो है नहीं है जी, ना आपका क्रेडिट स्कोर लगता है
1: जी,
0: ना इसमें लगता है कितने घर हैं, या एक घर है, दो घर है, उल्टा इसमें आपके पास नोटिस ऑफ असेसमेंट लगता है और आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, ये छोटे बड़े डॉक्यूमेंट्स लगते हैं
1: जी।
0: भाई गवर्नमेंट पे डेटा पहले से उसमें सेटिंग तो कर नहीं सकते कुछ, एडिटिंग गवर्नमेंट को तो एडिटिंग करके आप, कोई टैक्स ही नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई परसेंटेज नहीं है, क्लाइंट के अकाउंट में फंडिंग आती है। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें अप्रूवल रेट अब मानो के 98% है,
1: 98%। सो मतलब जे थोड़े को 10 आ रहे हैं तो उन्होंने 9 या 8 फैमिलीज नु फंडिंग मिलती है।
0: मैं देखो झूठ नहीं बोल रहा, अगर 10 आ रहे तो 9.5 बंदों को फंडिंग मिलती है। अब एक जरूर चीज है,
1: अच्छा अद्धा बंदा भी, अद्धा भी होंदा बंदा मतलब सो रेटिंग अच्छी है, तुसी कहने दा मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जे थोड़ी गारंटी आ कि जे तुसी चले गए हो तो तुसी लेके कुछ ना कुछ सरकार गवर्नमेंट तो आओगे, स्किल डेवलप करवाओगी करवाओगी गवर्नमेंट जे तुसी इंटर कर रहे हो तो।
0: बिल्कुल ये चीज है, और ऐसा नहीं कि कल फंड आज ज्वाइन करा कल फंडिंग आएगी ना, 60 डेज एवरेज टाइम है, किसी का 40 में हो जाता है, किसी का 70 में हो जाता है, अब पेशेंस लूज नहीं करनी होती।
1: सो बहुत परिवार सानू सुन रहे हैं, बहुत सारिया फैमिली सुन रही हैं, तुसी जे फंडिंग लेनी है, स्किल डेवलप करना चाहते हो, पढ़ के अपने स्किल नू डेवलप करना चाहते हो, लेबर जॉब तो खड़ा छुड़ाना चाहते हो, तो यूनी ग्लोबल एडवाइजरी थोनों गवर्नमेंट तो ग्रांट्स दे लैके दे रही है, 7 साल तो कंसल्टेंट ही कर रही है, यह सिर्फ एजुकेशन नाल, होर कोई लोन इधर उधर दी गल्लां नहीं करते, सिर्फ एजुकेशन नाल डील करते हैं, तुसी जे ग्रांट्स लेनी है तो यूनी ग्लोबल एडवाइजरी नाल राबता करो। नागपाल सर 3 बारी नंबर दे दो जी,
0: नंबर जी है 437-264-31-75, 437-264-31-75, तुसी हुणे भी असी कॉल कर सकते, आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, 437-264-31-75, 437-264-31-75।
1: बहुत शुक्रिया जी, 437-264-31-75 हुणे कॉल कर लियो, नागपाल सर हुणां नूं ते फिर तुहानूं देखो $1,00,000 किदां तुहाडे अकाउंट दे विच डिग गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू
2: भाई। आ तारां कड्डी कौण आउंदे आ,
3: एक थन्ने वाले मुंडे आ, हुण लगणगीआं
1: रौणकां। थोड़ा जिहा फ्राइडे मना लीए ना, आपां गल्लां सीरियस करन लग गए। नव एयर कंफर्ट तो संधू साहब साडा लाइन ते ने, 0762 लाइन ते ने, साडे प्राउड स्पॉन्सर गुरजीत सूरी जी भी लाइन ते ने, बस हुणे कर दिया राबता। हाय हाय क्या बात आ,
2: हाय
1: हाय

0: Halloween. Get your tickets now at heritagesounds.ca. Presented by TD Bank in association with Turkish Airlines, Heritage Canada, Experience Ontario, Experience Brampton, and the Toronto Star.
1: क्या बात है heritagesounds.ca ते जाओ ते जैस्मिन सैनलेस 8 अगस्त नू लाइव ब्रैम्पटन CAA सेंटर स्टील ते कैनेडी ते बिल्कुल नाल तुसी जरूर जरूर जरूर गेड़ा मारियो गेड़ा नहीं टिकटा ले लो ते फिर गेड़ा मारियो टिकटा बिना ना पहुंचो ते लाइनां लगी होणगी जैस्मिन सैनलेस जद पाऊगी भंगड़े गिद्दे फिर सारे कहणगे बल्ले यार एक तुसी राइनो फैंस वाले नू कॉल करो जे किसी ने भी नवी फैंस लगवानी है तुसी डैक नवी लगवानी है या फैंस डैक दी रिपेयर करवानी है राइनो फैंस वाले दा नंबर है 647-804-3220 647-804-3220 नंबर है 647-804-3220 बहुत ही सोना कम ते नंबर वन ते कमाल दा थोनू यह रेट दे रहे हैं राइनो राइनो राइनो फैंस वाले 647-804-3220 दे उते कॉल तुसी कर सकते हो 5505 हेलो
2: हाँ जी नवी जी एक जी गीत सुना दो मान साहब का इश्के दी मारी में चली हो गई
1: इश्के दी मारी वे में चली हो गई ये भी ला देने नो प्रॉब्लम
2: थैंक यू
1: ठीक है थैंक यू सर बहुत शुक्रिया 3550 हेलो
3: हाँ जी सत श्री अकाल
1: भाजी
3: हाँ जी भाजी एक नागनी है दुए कोई वाइपन वेपन भी है उन्हें भी कहते नाम
1: अच्छा वेपन नु भी केड़ी नु कहते वेपन नु
3: आप
1: बनाते अच्छा चलो देख दे
3: पुराने
1: टाइम की गल अरोरा दे विच फ्लैक्सिबल क्लोजिंग्स सिर्फ 5 महीने तो लेके 18 महीने तक होर जानकारी लिए आज ही संपर्क करो कॉल करो 905-840-7135 905-840-7135 या टेक्स्ट मैसेज करो 416-450-6680 416-450-6680 या ईमेल करो sales@paradisedevelopments.com वधेरे जानकारी लिए विजिट करो paradisedevelopments.com
4: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट्स लगियां गंभीर सट्टा

सतगुरी अपना सगला दुख मिटाया, ताप रोग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया, मेरा गुर पूरा सुखदाता।

कुंकुमस्य समद्युतिः बुध ज्ञानमयो सर्वान् कुंकुमाङ्क चतुर्भुजान् खड्गमालकदाभरणं चैव किरीटमकुटोज्ज्वल

सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।

कारकः विषमस्तान सम्भूता पीडां हरतु मे रविः रोहिणी शसुधा मूर्ति सुधा दात्र सुदाशनः विषमस्तान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है। अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और समर का जो मौसम है वो आपके लिए चल रहा है और थोड़ी थोड़ी बरसात, थोड़ी थोड़ी ठंड, थोड़ी थोड़ी गर्मी, बहुत ही प्यारा सा मौसम है। और अब आपके लिए बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, जिनके बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। और पिछले हफ्ते आप सभी ने फादर्स डे मनाया, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी बढ़िया लेके आना चाहते हो, आउटडोर, अभी समर है तो आपको बढ़िया आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, लेटेस्ट किचन गैजेट्स चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए सेंट्रल मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए, समर स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस electronics.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा 905-799-0045-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਫੋਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਅਰਜੁਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1115 ਤੇ 116-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अब आपने घर खरीदना बेचना है तो आप किचन और वाटरलूप वाल्व में नसीब खंड को कॉल कीजिए 519-546-1260 519-546-1260। घर खरीदने के बाद एकदम आपको ख्याल आता है मूविंग का, तो मूविंग के लिए एचके मूवर्स आपके लिए तो कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-704 416-524-6704 मूविंग के लिए। सबसे बढ़िया आपकी सेवाएं मिलती हैं कम्युनिटी में, तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। तो आइए आजकल मौसम के ही मुतल्लक गाने सुनाए जाए, तो क्या ख्याल है कि मौसम इतना खूबसूरत है, तो उसी के मुतल्लक आपको सुनाते हैं। लता जी का गाया हुआ मीना कुमारी के ऊपर फिल्म आया गया था ये गीत पकीज़ा में, तो वही गीत आपको सुनाती हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको इसी तरह आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तो आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाने वाली हूँ। पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाया है तो अब आपके लिए मास्टर विजन डिपू लंदन में मौजूद है घोर रोड पे। तो आप मास्टर कोलिजन डिपू पर जानकारी ले लीजिए, और किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपू का नाम याद रखिएगा। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर चाहिए, तो आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है, तो आप उनके बढ़िया बढ़िया सामान लेने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-709-0045-799-0045। न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट ब्रू ब्रिटानिया पे मौजूद है, और जानकारी के लिए 905-814-1730 पर आप लाइव कुकिंग करवाने के लिए उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको गीत सुनाते हैं, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, राज फिल्म आई थी 1967 में, राजेश खन्ना की।

0: गाना थोड़ा सा सैड है, लेकिन थोड़ा मौसम के लिए, जैसे आजकल मौसम बहुत अच्छा है तो कई बार ऐसा महसूस हो जाता है आपको, इट्स ए गुड फीलिंग समटाइम्स। तो आइए, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ। तो रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। तो आजकल बहुत सारी जो न्यूज है बहुत किस्म की आ रही है बाहर से, जब तक हमारा प्रोग्राम आता है वो जो न्यूज होती है वो सारे आप तक पहुंच जाती है। तो फिर आपके लिए ये जो न्यूज है तो फिर थोड़ी हम रिपीट वही न्यूज आपको दोहराते नहीं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी सी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपको सुनानी चाहिए। जैसे कि जिस दिन भगवान देने पर आते हैं उस दिन किस्मत नहीं देखते, और जिस दिन बचाने पर आते हैं उस दिन हालात नहीं देखते। आज जो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। बस आप मेहनत करते रहो क्योंकि समय सबका आता है, याद रखिएगा। घड़ी को कोई नहीं चढ़ाता फिर भी वह चलती रहती है, इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों रुकिए मत। तो दिल को अपने कायम रखिए, अपने आप को कायम रखिए, बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए, तो आप जरूर। एक लड़का है इंडिया में 14 साल की उम्र में, वो उसने 141वीं मंजिल पर ऑफिस अपना बनाया है। यह जैनम जैन 14 साल के हैं, भारतीय मूल के हैं। तो मैंगो इंजन AI टूल्स बनाते हैं जो बिजनेस की मार्केटिंग, ग्राहकों तक पहुंच और ग्रोथ में मदद करते हैं। तो वह 6 साल की उम्र में बिजनेस मीटिंग्स में जाना शुरू किया, 13 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई पूरी की, कई पेटेंट, TEDx स्पीकर और इंटरनेशनल अवार्ड में के विजेता हैं। तो ये है मैंगो इंजन AI स्टार्टअप। तो मैंने कहा कि आपके लिए थोड़ा एग्जांपल हो, छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरा कहने का है कि अगर हमें जिंदगी में सीखना है तो कहीं से भी आप अपने छोटों से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप बस आसपास देखते रहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर के आगे बढ़ सकते हो। अब आपके लिए एक और गाना मैंने चुना है, बहुत ही बढ़िया सा गीत है, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको कलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कलिजन डिपो लंदन में मौजूद है, गोर रोड पे। तो मास्टर कलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर अपने घर में, बढ़िया TV लेके आना है, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको लेटेस्ट मॉडल्स मिलेंगे और स्पेशल प्राइस पे मिलेंगे। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और फिर उनको कॉल कीजिएगा अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। तो ये नंबर है आपके लिए 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको एक और गीत बहुत ही रोमांटिक सा आपको सुनाते हैं। तो ये फिल्म गीत आई थी 1970 में, रणजिंदर कुमार।
1: दिल लुभाते रहे
0: हसरत जयपुरी के लिरिक्स है,
1: ये म्यूजिक के लिए
0: नहीं
1: वही तो नहीं

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है गाथा संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, तो रात को भी आपकी सेवा में जरूर ही हाजिर हो जाएंगे। तो इस हफ्ते आपने निर्जला एकादशी भी मनाई। आपको याद होगा कि निर्जला एकादशी के दिन इतने सारे घड़े लोग एक दूसरे को गिफ्ट में देते हैं और पानी भर भर के गिफ्ट में देते हैं। जगह जगह लोग शबीले लगाते हैं तो ठंडा पानी पिलाते हैं। तो वो जो दिन है आपको याद होगी, जब निर्जला का यही दिन होता था, निर्जला का अच्छी वाला दिन, जिसमें ये किया जाता था कि लोगों को पानी पिलाया जाता था, शबीले लगती थी और भी बहुत सारे। गर्मियों में जितने गुरुओं के दिन आते थे उसमें भी हर जगह पे शबीले लगती थी और बड़ा बहुत ही बढ़िया सा वातावरण उसमें क्रिएट होता था। अगर आपको मूव होना है तो एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आप की उनकी बहुत सारी टीम्स होती हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो और आपको अगर मूविंग के लिए बुकिंग करनी है तो 416-524-704 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 HK Movers।

0: जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सारे गामा कारवा।
0: अगर आपको किसी किस्म का भी आपने प्रेसो वॉशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बहुत बढ़िया सामान मिलता है। अब आज बच्चों को छुट्टियां हो गई है तो आपको क्या है कि गाड़ी ध्यान से चलाना, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, तो कोशिश करिए मेन रोड से जाइए, बीच वाली सड़कों से ना जाइए, आपके लिए भी सुरक्षा और बच्चों के लिए भी सुरक्षा, ताकि आपका लाइसेंस महफूज रहे। सो इसलिए तो अब आपको सुनाते हैं पंजाबी का गाना। तेरी कनक दी राखी मुंडिया हुण मैं नहीं वेंदी। तो हमारे प्रोग्राम का समय भी समाप्ति की तरफ है। तो दो लच्छियां फिल्म आई थी ना ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की, तो उसी का ये बहुत प्रचलित गाना है। ये जो गाने हैं भूले बिसरे गीत कभी कभी सुनने को मिलते हैं। तो आपको अब आपसे विदा लेती हूँ, नानक नाम चढ़ती कला, हैव अ वंडरफुल एंड सेफ ड्राइव। तो अब इस गीत के साथ एंजॉय द सॉन्ग।

छोड़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित हुण खसम न पाया पौड़ी छुड़के फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ नांदे ही लेव लागना

सतगुरु होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कभों चूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख न जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। जुड़ चुके जी एक बार फिर खूबसूरत सवेर चढ़दी कला वाली सवेर दे विच, शनिवार की चढ़दी कला वाली सवेर और खूबसूरत धुप दियां किरणां चढ़दी कला दियां प्रतीक, ते खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधू

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: तो संतोष जी, ये इतना बढ़िया कमर्शियल है जी, तो नजारे आ गया हुए, तो सारे जी पहुंचिए नजारा पे 30 रेमला ड्राइव पे और जल्दी से अपनी पार्टियां बुक कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर है 9054512600 पे कॉल करके आप अपना इवेंट बुक कीजिए, पार्टीज बुक कीजिए। आपको शाम को डिनर के लिए जाना है, लंच के लिए जाना है, तो इवेंट के लिए जाना है, कुछ भी हो प्री बुक करके जाइए और बढ़िया एम्बियंस का और टॉप खाने का एंजॉय लीजिए।
2: जी बिल्कुल,
1: एंजॉय कीजिए
2: बिल्कुल। सो साडे नाल दे नाल है गया तवा किचन दी टीम, तो साडे नाल है गया दीक्षा जी। दीक्षा जी तुसी ऑन एयर हो?
3: ਸਪੈਸ਼ਲ
2: ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿਚ?
3: ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਨਾ ਭਟੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਚਿਕਨ ਲੈਣਾ
2: ਜੀ,
3: ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਬਣਦਾ
2: ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਰੀਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਚੰਪੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਕੇਟਰਿੰਗਸ ਮੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ,
2: ਬਿਕੋਜ਼
1: ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇ ਆਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਇਨ ਕੇਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਚੰਪੀ ਜੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਟੈਕਸਟ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਆਜ ਕੀ ਡੀਲਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਕੋ 1299 ਮੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲਸ ਲਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵਹਾਂ ਪੇ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਜ ਪਹੁੰਚਨੇ ਵਾਲੇ 1299 ਵਾਲੇ ਆਪਕੀ ਡੀਲਸ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ ਜੀ 1299 ਮੇ, छोले भटूरे दो प्लेट आपको मिलेंगे जी 1299 में, वेज बिरयानी, नूडल्स, न्यूट्री कुलचा, वड़ा पाव, ये सारी चीजें आपको मिलेगी जी 1299 में। और इनके कुलचे जी इतने बढ़िया है, आप खाओगे तो एक आदमी एक कुलचा खा के रिझ जाएगा। सही है दीक्षा जी? हेलो,
3: हाँ
1: जी। और वीकेंड स्पेशल आप अगर ये सारी डीले लीजिए, और जो परांठे वाली आंटी है उनके जो स्पेशल परांठे है दारा सिंह परांठा, ये भी आपको 1299 में दो मिलेंगे जी। तो इतनी बढ़िया डील्स है, ये रेडियो के लिए स्पेशल डील्स है, जो भी रेडियो सुन के आएगा दीक्षा जी, तो आज उनको ये डील्स आप देंगे। सो जी, ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
2: जी। बिल्कुल,
1: हाँ जी।
2: सो 1299 दे दो दो डील्स है कॉम्बो आ। सो तुसी आज सारे जाने किचन कर लो बंद, ते रसोई पहुंचो, साडी रसोई केड़ी रसोई से तवा किचन
1: थी,
2: एंड बहुत ही फ्रेश फूड हुंदा है इन्हां दा। सो असी हमेशा वीकेंड ते इत्थे जांदे, और तुहानू इन्हां दा फूड खा के लगेगा नहीं कि तुसी बाहरों कुछ खा के आए हो या तुहानू हैवीनेस हो रही है। सो डील्स भी बहुत वधिया है। सो सारे ने पहुंचना है तवा किचन।
1: तवा किचन आप पहुंचोगे जी 50 सनीवेल गेट पे, ये जी बोवियर्ड एंड एयरपोर्ट का इंटरसेक्शन है, या फिर माउंटेनिश एंड बोवियर्ड का इंटरसेक्शन है, वहां पे पहुंचिए। और उसका नंबर है जी 9057901699 पे आप उनको कॉल कीजिए और जल्दी से अपने ऑर्डर्स बुक कीजिए। और जो भी इनका टेस्टी खाना है, ये आई थिंक इनका स्लोगन है संतोष जी, प्रिपरेशन घर वर्गी और टेस्ट ढाबे वर्गा।
2: बिल्कुल। सो जे तुसी इंडिया दे टेस्ट नु मिस कर रहे हो, सो एक बारी तवा किचन जाओ, और इन्हां दे जेड़ी हैगी खन्ने वाली टिक्की,
1: हाँ जी हाँ जी,
2: बहुत ही स्वाद है। और इन्हां दी एक रबड़ी हुंदी है, जदों असी इंडिया च घूमन जांदे हुंदे
1: सी
2: रस्ते दे विच, मैकलॉडगंज जांदे सी रस्ते दे विच, बॉम्बे पिकनिक स्पॉट आंदा सी, मेरा फेवरेट, उत्थे असी रुक के रबड़ी वाली जेड़े फलूदा खांदे हुंदे सीगे, और रबड़ी वाली खीर भी हुंदी सीगी, और फलूदा सेम ओही टेस्ट तुहानू तवा किचन ते मिलेगा। इन्हां दे पहाड़गंज वाले छोले भटूरे, ओ माई गॉड, न्यूट्री कुलचा तुसी खा के देखे चौड़े बाजार वाला। तुसी इंडिया नू जे तुसी मिस कर रहे हो ना, एक बार तुसी तवा किचन जाओ, पैसे भी बचणगे और तुहानू क्वालिटी दा मजा भी आ जाएगा।
1: हाँ जी, जी।
2: बिल्कुल।
3: आज साड़ी आज एक स्पेशल डील लगी हुई है, जो है कि मैंगो शेक ते 699 दा ओनली मैंगो शेक तुहानू मिलूगा, ड्राई फ्रूट ते आइसक्रीम दे नाल।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया डील है। आई थिंक दीक्षा जी, सॉरी मैं वो टेक्स्ट मैसेज मैंने अभी जस्ट देखा, लास्ट में एक डील लिखी थी ये भी चंपी जी ने, आई थिंक आप जो कैन वाला आप नहीं यूज करोगे राइट, जो कैन का मैंगो नहीं यूज करोगे, फ्रेश मैंगो से बनाया जाएगा
2: जी।
1: और जैसे आप ऑर्डर करोगे आपके एकदम फ्रेश बना के आपको फ्रेश मिलेगा, और उसके टॉपिंग्स आप आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स डाल के मिलेंगे राइट।
3: हाँ जी, आइसक्रीम एंड ड्राई फ्रूट।
1: तो जी समर का इससे अच्छा आप क्या बोलते हैं कि एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं आएगा, आपको एकदम फ्रेश मिलेगा और ऑन द स्पॉट आपके लिए बनाया जाएगा। सो दीक्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी द डील अगेन। तो 699 में आपको मैंगो मिल्क शेक मिलेगा विद आइसक्रीम एंड ड्राई फ्रूट
2: या और फ्रेश मैंगोज।
1: हाँ जी रिक्शा
3: फ्रेश मैंगो, और वो भी ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल पतला मिलेगा, पूरा जो हमारा इंडिया वाला टेस्ट जो गाढ़ा गाढ़ा मैंगो शेक होता है वही मिलेगा।
2: वाओ वेरी नाइस। सो सारे ने पहुंचना है जल्दी जल्दी तवा किचन, बट इन्हों थोड़ा जहा टाइम दिया करो इमीडिएटली, उस टाइम जो तुम कोई फ्रैश चीज लैनी है तो थोड़ा जहा वेट करना पै सकता है, 20-25 मिनट की वेटिंग लैके चलो। सो तुम सारे पहुंचो तवा किचन 50 सनीवेल गेट, तो साडा शो सुनते रहो, होर भी बहुत सोहनिया सोहनिया डील सारिया है, सिर्फ खान पीन के नाल होर भी सोहनिया सोहनिया डील सारिया।
1: दीक्षा जी आप, हम आपको फिर से कॉल करेंगे, हम अपने परांठे वाली आंटी से बात करेंगे और फिर से आपके साथ जुड़ते हैं जी।
3: ओके
1: ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। और एक छोटा सा मैसेज हम देते हैं जी तवा किचन की तरफ से,
4: डिलीवर कर दे कस्टमर्स नु ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
5: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी, सच मनो स्वाद ही आ गया गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू, इना दी सर्विस एक्सीलेंट है, ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
6: 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बवेड़ा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699
4: जो असी फूड डिलीवर करते हैं कस्टमर्स नू ते उना दी रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
7: हां जी सत श्री अकाल जी, अपनी कंपनी मिसी सागा, अपन कैटरिंग दी लोड़ सीगी ते अपा तवा किचन नाल कॉन्टैक्ट किया, अपन 50 बंदे दी कैटरिंग करवाई सी ते अपने करीबन 55-60 बंदे सीगे, फिर भी कैटरिंग उन्हां कोल मतलब बहुत ज़्यादा सी, सानू कोई थोड़ नहीं आई, असीं रिकमेंड करते हैं तुसीं भी कैटरिंग कराओ तवा किचन तो। थैंक यू सो मच।
6: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बवेड़ा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699।
1: तो जी कोई भी कैटरिंग करवानी होती टॉप का खाना मिलेगा आपको, प्रॉपर बना हुआ टेस्ट ढाबे वर्गा, प्रिपरेशन घर वर्गी, तो पहुंचे तवा किचन 905-790-1699। संतोष जी क्या हो गया, थोड़े आज थोड़े काम कुछ हंस रहे हो आप जी, क्या हुआ?
2: या, मैं हंस रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत हास्य जी वाला एक क्वेश्चन है।
1: ओके जी।
2: सो मेनू किसी ने पूछा बट मेनू आंसर नहीं आ रहा, बट मैं वैसे ही हंसी जा रही
1: हूँ।
2: और मैं सोचा चलो कि असी अपने रेडियो फैमिली नु पूछ लिए कि जे कोई मेनू एदा आंसर दवे ते मैं अगे भेजा। सो मेनू क्वेश्चन हैगा है मेरा,
1: तो संतोष जी के पिटारे से कुछ निकल रहा है। हां जी,
2: ओ क्वेश्चन हैगा या कि ओ केड़ा लैंड या जिथे सानू गाना गाना मना है,
1: गाना गाना मना है,
2: या वो कौन सी लैंड है जहां हमें गाना गाना मना है। सो तुसी भी सारे सुन रहे हो साडा शो, सो तुसी सानू कॉल करके दसो ते कित्थो केड़ी लैंड च तुसी गाना नहीं गा सकदे, कौन सा लैंड जिथे तुसी गाना नहीं गा सकदे। सो साडे कोई भी विनर्स जो भी आंसर्स देंगे, स्टार्टिंग फर्स्ट टू कॉलर्स नो असी दे रहे हैं उन्हें तवा किचन वालों। सो की दिता जाए पंकज जी, असी तवा किचन नो दस दवांगे फिर
1: आज जी, जो भी आज जाएंगे
2: न्यूट्री कुल चाक दे दी।
1: हाँ, न्यूट्री कुल
2: चलो जी। सो स्टार्टिंग टू जेडे भी साडे दो कॉलर्स होंगे रैंडम असी चकांगे उन्हां दे नाम। सो तुसी सारे ने तवा किचन च फिर पहुंचना है, असी तुहानू दसांगे नाम उन्हां दे। सो मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रही हां मैं, ओ केड़ा लैंड है जिथे तुसी गाना नहीं गा सकते, गाना गाना मना है,
1: गाना गाना मना है।
2: या सो तुसी आंसर कित्थे देने है, तुसी साडे स्टूडियो दे नंबर ते कॉल करना है। सो साडे स्टूडियो दा नंबर हैगा 905-673-3337 905-673-3337 ते कॉल करके दसो केड़ा लैंड है जिथे गाना गाना मना है।
1: लेकिन संतोष जी ऐसे कैसे हो सकता है?
2: हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है,
1: तो क्रिएटिविटी सुनी जाए
2: जी। लेट्स सी कि सारियां दा आंसर की हुंदा है। सो तुसी सानू कॉल करनी है और दसना है सानू केड़ा लैंड है जिथे गाना गाना मना है।
1: ओके जी, तो आंसर्स क्रिएटिव होने चाहिए, थॉटफुल होने चाहिए,
2: कुछ भी
1: और पहले दो कॉलर्स जो करेंगे उन कॉलर्स आएंगे या फिर राइट आंसर आएगा संतोष जी?
2: कुछ भी ये कोई कंपटीशन नहीं हैगा।
1: ओके जी,
2: तो बिल्कुल
1: तो उनको मिलेगा जी तवा किचन की तरफ से लुधियाने वाला न्यूट्री कुलचा, बिल्कुल आज ये फ्री मिलेगा। तो जल्दी कॉल कीजिए जी, स्टूडियो के नंबर है 905-673-3337 पे आप कॉल कीजिए और हमें बताइए कि क्या है वो चीज। संतोष जी चलिए जी अपने पहले कॉलर।
2: हेलो प्रदीप जी, तुसी ऑन एयर हो?
8: हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग जी।
8: ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ
2: ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ,
8: ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇਹ ਲੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਕਾਲਿੰਗ।
8: ਥੈਂਕ ਯੂ,
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜੀ 8777।
9: ਓਕੇ ਬੁਈ, ਬੋਨਜੋ ਸਾਬੀਆਂ।
2: ਹਾਂਜੀ
9: ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਠਾਕ?
2: ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
9: ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ।
1: ਚੰਦਰਮਾ ਕੇ ਉੱਤੇ?
2: ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ,
9: ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
9: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ।
2: ਓਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ,
9: ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
1: ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ।
2: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।

0: हे बादियां वाला सॉन्ग है ये, बताओ अब कौन होगा हमारे पास नेक्स्ट? मैं आपको स्क्रीन ही दिखा रही हूँ,
1: नो नो नो, अभी तक
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको बूहे बारियां बता दिया।
1: बारियां है तो उसके मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ में आ रही है,
0: बूहे मतलब
1: शिबानू जी होंगे।
0: ये पंकज जी इज द विनर। सो शिबानू जी आप ऑन एयर हो
2: जी,
0: आ जाइए अंदर। शिबानू जी आप ऑन एयर आ गए हो
2: जी जी जी जी जी।
0: आप ये सॉन्ग में गुम हो गए ना?
2: नहीं मैं गुम ही हो गया, मैं उससे पहले वाले सॉन्ग में गुम हो गया था जिसके अंदर आपने चलाया था जब हम जवान होंगे।
0: ओह माय गॉड,
2: उसमें क्या था
0: शिबानू जी बताओ कहाँ पे गुम हुए थे आप उस सॉन्ग के बाद?
2: मैं नहीं गुम हुआ था, मेरे कस्टमर गुम हो जाते क्योंकि जब वो विंडो लगाते जवानी में तो बुढ़ापे तक वो विंडो चलती है।
0: ओह माय गॉड, वेरी नाइस
2: जी जी जी जी।
0: तो शिबानू जी साडे बहुत ही वधिया फैमिली वर्गी पर्सन है और इन्हों का काम उस तो भी वधिया है, राइट विंडो फोर्स की टीम हैगी जो कि तुहानू इन्निया वधिया वधिया डील्स दिंदे आ। जदों तक शिबानू जी साडे कोल नहीं सी मैनू नहीं पता सी कि साडियां खिड़कियां तो इन्नी ठंड क्यों आंदी है, ठंड दे विच ठंड ते गर्मी दे विच गर्मी क्यों हो जांदी आ। फिर मैनू इन्हां ने दस्सिया कि खिड़कियां ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੜਕੀ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਿਬਾਨੂ ਜੀ ਬਤਾਏ ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੇ ਹੋ ਹਮਾਰੀ ਸਭ ਕੀ?
2: तो संतोष जी हमारी जो विंडोज है या जो कनाडा में विंडोज की जरूरत होती है उसको गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है एज एनर्जी स्टार विंडो। तो इस सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि वो अपनी लैब में ले जाके हमारी विंडो को पूरी टेस्टिंग करते हैं, प्रेशर टेस्टिंग होती है, टेम्परेचर की टेस्टिंग होती है। तो ये जो विंडोज है -40 से लेके +40 तक टेम्परेचर्स को ले सकती है। सो जी, सो एनर्जी स्टार सर्टिफाई करवाने का ये पर्पस होता है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसके कंट्री के मुताबिक होनी चाहिए। बहुत सारे ना लोग कोर्ट्स लेते हैं और उसके बाद वो विंडोज एनर्जी स्टार होती नहीं, 5 साल में खत्म हो जाती हैं। अब एनर्जी स्टार विंडोज जो होती हैं वो 25 साल की वारंटी के साथ आती हैं।
0: तो
2: बेसिकली जी जी ये लाइफ टाइम भी बोलते हैं कुछ लोग इसे और कुछ लोग क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि 25 साल की। अब 25 साल की वारंटी क्या है? 25 साल की वारंटी में आपका ग्लास कवर्ड है, आपके फ्रेम्स कवर्ड है, आपके क्रैंक मूविंग पार्ट्स हिंजेस एवरीथिंग इज 25 ईयर।
1: क्या बात
2: जी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोट लेते हैं तो जस्ट कोट का कंपैरिजन ना करें।
1: Correct.
2: आप उसमें ये चीजें देखिए कि लगी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेरिकन थर्मल ग्लास यूज करते हैं जो लाइटेस्ट ग्लास अवेलेबल है इन द वर्ल्ड और जिसकी इंसुलेशन वैल्यू जो है वो 40+ जाती है।
1: Great.
2: तो जो लॉक्स है आजकल पंकज भाई आपको पता चल रहा होगा कि कितने ब्रेक-इन्स हो रहे हैं, राइट?
1: हाँ जी जी जी।
2: तो हमारे पास एक स्पेशल लैमिनेट ग्लास है, जिन लोगों के घरों में ब्रेक-इन्स भी हैं उन्होंने फिर विंडो अपनी अगर आप चेंज कराने का सोच रहे हैं
1: जी,
2: तो या फिर आगे फ्यूचर के लिए भी किसी के ना भी हो, भगवान ना करे कि ब्रेक-इन हो, बट अगर आपने आगे अपना घर सिक्योर करना है तो जो नीचे की ग्राउंड फ्लोर की विंडोज होती हैं उसमें एक लैमिनेट अकॉस्टिक ग्लास आता है। वो ग्लास इतना सॉलिड होता है कि मतलब आप उस पर पत्थर हथौड़े जो मर्जी मार लीजिए वो ग्लास तोड़ना इम्पॉसिबल है। मतलब वो अगर वो क्रैक भी कर जाए तो बंदा हाथ नहीं डाल सकता अंदर क्योंकि उसके अंदर एक लैमिनेट की शीट लगी होती है।
1: हाँ जी हाँ जी।
2: तो एक बहुत स्पेशल ग्लास है जो मेरे हिसाब से लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे कंसिडर करना ही चाहिए।
1: करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। करेक्ट जी। और शिबानू जी हम हमेशा कहते हैं कि चोर का घोड़ा टूट जाएगा आपकी खिड़कियां और विंडोज नहीं टूटेंगे, ये सही है राइट
2: जी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ जी।
2: तो और दूसरी चीज क्या है कि दूसरा अभी आपने माल्टन में एक पीछे केस हुआ था उसमें उन्होंने लॉक तोड़ दिए थे। तो लॉक अगर आप चाइनीज लॉक यूज करोगे, अगर आपकी विंडो अच्छी है सब कुछ है, उन्होंने डिफाइन भी कर दिया लॉक ही पुअर है
1: जी,
2: तो फिर आप क्या करोगे मतलब? तो इसलिए उसी के लिए हम एक ना क्रॉस लॉक टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिसके अंदर आपका मल्टी पॉइंट लॉक सिर्फ साइड से नहीं चलता, वो टॉप वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है विंडो का उसको भी लॉक कर देता है।
1: ग्रेट वंडरफुल।
2: ये जर्मनी के लॉक्स हैं, रोटो के लॉक्स हैं। सो अगर आप लगवा रहे हैं तो ऐसी चीज लगवाइए क्योंकि एक 25 साल में एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है।
1: करेक्ट जी।
2: कोई आपने रोज रोज गाड़ी की तरह मतलब 5 साल 7 साल 10 साल में चेंज नहीं कर सकते, ये 25 साल का आपका सौदा होता है। सो बी वेरी केयरफुल जब आप करें तो इन सारी चीजों को कंसिडर करें जो मैंने पॉइंट बताया कि आपके लॉकिंग मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, आपके ग्लास लैमिनेट होने चाहिए ग्राउंड फ्लोर के।
1: जी जी।
2: सो इस तरीके से जी।
1: तो शिबानू जी आई थिंक जो आपका कंपनी का नाम है वो भी सही है बिकॉज आप राइट विंडो बिठाओगे तो ही आप प्रॉपरली सिक्योर हो पाओगे, अच्छे से आप बेनिफिट ले पाओगे होंगे, कितनी सारी चीजें शबानु जी ने बताई है। आई थिंक मैं कहता हूँ कि 80-90% लोग ये इसको इग्नोर करते होंगे।
0: पंकज जी सब तो वधिया गल दसां, जिवें अजकल साडे कोल पैसे आंदी थोड़ी शॉर्टेज सारयां कोल ही चल रही आ, सो इन्हां कोल ऑफर भी चल रही सी। शबानु जी अभी भी वो ऑफर चल रही है आपकी?
2: जी जी जी वो ऑफर अभी भी ऑन है।
0: बता देंगे उस ऑफर के बारे में, 30% आप अभी पे कर सकते हैं, बैलेंस हम लोग 12 महीने में इंस्टॉलमेंट्स में रहे
2: जी। सो एक तो ये है कि आप 20% के करीब आप डाउन पेमेंट करके और आप अपनी आसान किस्तों में, छोटी छोटी किस्तों में आप पे करते रहिए, और आप सारे घर की जैसे टाउन हाउस है वो $70-80 पर मंथ के हिसाब से हो जाता है, उतना तो आपका गैस का बिल $300-350-$300 आ जाता है, जिसमें $70 तो आपके वैसे ही ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और बताता हूँ, जो लोग अपना घर सेल करना चाह रहे हैं
1: जी,
2: तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले 3 महीने हम कोई किस्त नहीं चार्ज करेंगे, वो विंडो लगवा लें, फर्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीटली फ्री। आप अपना घर लिस्ट करें, जब आपका घर बिक जाए तो अगर आप पे करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको पे करना ही पड़ेगा, तो आपका ऑब्वियसली मनी आ गया तो आप आराम से अपना लोन पे ऑफ कर सकते हैं, ओपन लोन है, कोई पेनल्टी नहीं।
0: वेरी नाइस
2: जी, 3 महीने के लिए कंप्लीटली फ्री,
0: 3 महीने के लिए कंप्लीटली फ्री। और प्लस पता है पंकज जी, असीना को विंडोज लगवाई और रियली जो बिल है ना गैस का, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि देखो एसी भी कट चलाना शुभानु जी कॉल करने के लिए। सो सारे ने कॉल करनी है शुभानु जी नू 416-206-3200 416-206-3200। थैंक यू सो मच जी,
1: थैंक यू सो मच शुभानु जी।
2: मैं बोलता हूँ 416-206-3200
0: जी। थैंक यू जी, पंकज जी बातें करते करते आंखें दर्द हो जाती हैं, कंप्यूटर यूज करते करते आंखें दर्द हो जाती हैं, कई बार हमें धुंधला भी नजर आता है, और जिम में साडे घर भी बंद बंद होंगे, ड्राइनेस हो जाती है। सो आपको क्या लगता है कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए इसका सोल्यूशन लेने के लिए?
1: मैं तो जाऊंगा जी,
0: गलत आंसर मत देना मुझे,
1: गलत आंसर
0: सही
1: जाऊंगा जी, स्पेक्स एक्सप्रेस पे
0: आप, मैं भी वहीं पे जाऊंगी, आप सही गेस कर रहे हो। तो साडे नाल है परमवीर जी स्पेक्स एक्सप्रेस तो, और अखां दी संभाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुसी एंड तक वेट ना करो, आफ्टर एवरी 6 मंथ अपना जनरल रूटीन चेकअप करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके पास ना बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स हैं, पहला की होंदा सी अखां च ड्रॉप पाके असी एक टेस्ट करदे सी, फंडस एग्जामिनेशन बोलते, उसमें पर्दा पुर्दा सारा चेक हुंदा, फिर किन्ने टाइम लई तुहानू धुंधला धुंधला नजर आउंदा सी, इस चक्कर च असी टेस्ट ही नहीं करांदे हुंदे सी, लेकिन इन्हां कोल बहुत वधिया मशीन है, तुहानू धुंधला बिल्कुल नहीं होगा, नाल दे नाल तुहानू इमेजेस भी दिखाणगे। सो थोड़ा जिहा दसोगे सानू तुसी किवें परमवीर जी हैल्प कर रहे हो तुसी इस दे विच?
3: बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारे श्रोतों ने, प्यार सत श्रीकाल। बिल्कुल तुसी ठीक किया, अजकल जिहड़ा नवे साडे को एडवांस टेक्नोलॉजी ने मशीनां ने, इहदे विच कोई भी ड्रॉप्स पाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, विदाउट ड्रॉप्स विदाउट डायलेशन जिहड़ी साडे को ओसीटी मशीन है जी, इह बैक ऑफ द आई जिहड़ा रैटिना है उहनूं स्कैन कर लैंदी है, रैटिना दीआं तकरीबन 10 लेयर हुंदीआं ने, सो जिहड़ी ओसीटी मशीन है उह पूरीआं 10 दीआं 10 लेयर नूं स्कैन कर लैंदी है, फिर चैक कर लैंदी भी कितें कोई लेयर पतली ते नहीं होई, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲੀਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਟਿਨਾ ਜਾਂ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਵੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੈਟਿਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਛਿੱਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਫਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਸੀਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰੈਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀਪਲੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਟਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਰੈਟਨਾ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਮੇਜਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 58 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ 905-460-8888। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਫ਼, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਸੋ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਓਪੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 905-405-8888-88 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸਿਸ ਕਿਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਲਿਊ ਪੈਕੇਜ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ $150 ਜਾਂ $200, ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊ ਪੈਕੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $300 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਫਰੇਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੰਡਨ ਫੋਗ, ਲਿਵਾਈਸ, ਰੈਂਗਲਰ, ਵੈਨ ਹਿਊਸਨ, ਐਡੀ ਬਾਵਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਫਰੇਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੋਂ 800 ਫਰੇਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਰੇਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ $100 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ $400 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ

वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, की हाल चाल है जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगे। इस सुनहरे जे मौसम दे विच सुनहरी जी आवाज दे नाल, सुनहरे जे प्रोग्राम दे नाल स्वागत स्वागत स्वागत, वी वेलकम यू ऑल।

बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर, जुत्ती ते सारे तारे की सारे अंबरां दे विचों जिन्ने भी प्लैनेट्स ने वो भी लाके ला दियो जरूर। प्यार मोहब्बत विच बंदा की कुछ नहीं कर सकता है ना, जिवें प्यार मोहब्बत दियां तंदां जिहड़ियां थोड़े नाल जुड़ियां होईयां ने वह दिन ब दिन जदों मजबूत होंदियां ने ते सानू भी खिच पैंदी है कि असीं भी मुड़ के थोड़े कोल जाइए ते थोड़े लई कुछ ना कुछ नवेकला लैके आईए। बिल्कुल अज लाइव ऑन लोकेशन साडी टीम पहुंची हुई है जी, सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रांड होम फर्नीचर ते। लोकेशन है 6685 टॉमकिन रोड, उत्थे पहुंचो जी। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सेल लगी हुई है, काफ़ी सारी बचत की जा सकती है। लाइव ऑन लोकेशन का फायदा यह होंगे कि पॉपअप लोकेशन जिहड़ियां इह होंदियां ने टाइम बीइंग वास्ते इह जिहड़ियां सेलां लगदियां ने उसका फायदा यही है कि कुछ चंद पैसे जिहड़े ने बच सकते हैं, उसके नाल फ्री गिफ्ट्स जिहड़े ने ज़्यादा मिल जाते हैं। सो जाके अज का दिन वधिया है जी, जिवें सिद्धू साहब दस रहे थे कि तुसीं पिकनिक वास्ते तैयारी खिंची हुई है तो जाते लंघते बढ़ते उधरले पासे गेड़ा जरूर लगा के आयो, की पता पसंद आ जाता कुछ तो उसके नाल गिफ्ट जिहड़े ने वाह कमाल थानू मिल सकते ने। सो अपना लक जिहड़ा है अजमाया जा सकता है अज ग्रैंड फर्नीचर दी सेल ते। अगला नंबर थानू देन जा रही हां जी मनु शर्मा होना दा, कि थानू पता है कि ओंटारियो दे विच ऑटो इंश्योरेंस विच नवे चेंजेस जिहड़े ने आ रहे ने। जुलाई तो बाद अपनी पॉलिसी रिन्यू कराउण वाले ड्राइवर्स नू एक्सीडेंट बेनीफिट्स ते अदर कवरेज लई नवे फैसले न्यू डिसीजनस करने पास करने पै सकते ने। सो बट द क्वेश्चन इज कि तुसी समझदे हो कि ए बदलाव जिहड़ा है ए चेंज थोड़े ते थोड़ी फैमिली दी सेफ्टी उत्ते की असर कर सकता है जी। सिर्फ घट प्रीमियम देख के डिसीजन ना लियो, सही कवरेज होना उस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जे थोड़ी ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल आने वाली है या तुसी अपने घर की रिन्यूअल चाहते हो, बिजनेस इंश्योरेंस ले बैटर कवरेज चाहते हो, रेट्स बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मनु शर्मा होर का नंबर तुसी जरूर लिख के रखो 289-952-9532 is the number। इस नंबर ते कॉल की जा सकती है ते मनु शर्मा होरां दे नाल गलबात की जा सकती है। लो जी ए एंड जे ऑटोमोटिव रिपेयर का नंबर भी थोड़ा दे दें, कहते कारा रिपेयर करते हैं असी ते ऐसी नवी नवेकली कार बना दें तो पता ही नहीं चलता। प्रोवाइड कर रहे हैं नवे समर टायर्स, चेंज करते हैं टायर्स, व्हील अलाइनमेंट करवानी हो, हर तरह का सस्पेंशन का काम करना हो, इंजन का काम करवाना हो, ब्रेकों का काम करवाना हो, एग्जॉस्ट का काम करवाना हो, ऑयल चेंज करवाना हो, रस्ट प्रूफ करानी हो गड्डी, तो बस फिर ए एंड जे ऑटोमोटिव रिपेयर। अच्छा जी जे इन्हों के कोल जाते हो तो एक प्लस पॉइंट ये है कि दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड पंजाबी, सो थोड़ा कितने भी ऑड नहीं लगेगा कि हाँ जी मैं हूँ उत्थे जाके किमें बोलांगा कि मेरे मेरी गड्डी च ए जिहड़ा है दिक्कत आ रही है। कई बार सानू लफ्ज लभदे नहीं है ना तो औखा हो जाता, फिर बंदा कहता छड परा मैं इतने नहीं जाऊँगा मैं कितने होर जाना, तो सारे बेनीफिट्स छड दिंदा। सो ए एंड जे ऑटोमोटिव रिपेयर तो तुसी गेड़ा जरूर लगायो, 91 हेली रोड बोल्टन, हाईवे 50 ते मेफील्ड का इंटरसैक्शन है जी, होम डिपो दे लागे है। नंबर नोट कर लेने 289-503-6726, नाल दूजा नंबर 905-857-7596 इज द नंबर। इस नंबर ते कॉल करना बिल्कुल भी ना भुलियो।

0: वैसे ये भंगड़ा बीट वाले गाने दा ना स्वाद अपना ही है जिन्ना मर्जी तुसी कोई होर गाना ला लो जदों एक ऐसे गाने वजदे ने तां मल्लो मल्ली यू नो थोड़ा जा खून जिहड़ा है थोड़ा जा डबल रफ्तार दे नाल चलना शुरू हो जांदा दौड़ना शुरू हो जांदा डू यू एग्री एग्री करदे हो मैनूं लगदा है ना सतनाम जी सत श्री अकाल स्वागत की हाल चाल हाँ जी हाँ जी हेलो आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी फिर दोबारा मिलायो ठीक है जी सतनाम जी की आवाज जी है मेरे तक तो पहुंची थी थोड़े तक पहुंची फिलहाल 905-564-444 प्रमोद जी फिर दोबारा कॉल कर लियो मेनू इंतजार रहेगा थोड़ी कॉल का गिल स्वीट फैक्ट्री प्योर वेजिटेरियन लाइव केटरिंग फॉर एनी ओकेजन मशीन मेड समोसे अवेलेबल ने हुन सो ऑल स्वीट्स जिहड़े ने कैनेडा दे विच जिन्ने भी थानू स्वीट्स दी थोड़ी जी यू नो क्रेविंग हो रही है वो थानू मिल सकते ने लाइव फूड ट्रक केटरिंग सारी ही ओकेशन वास्ते 6 लोकेशनस तो थानू सर्व कर रहे हैं 2 इन्हां दीआं लोकेशनस कैलगरी दे विच ने 5 चलो फ्रैशको दे विच ने सो इन्हां दे तुसी जदों चलो फ्रैशको दे विच शॉपिंग करदे करदे भुख लगी आई तां फिर गिल्स स्वीट फैक्ट्री ते इक गेड़ा की लाणा उत्थों लंघोगे तुसी तुहाडे अपने आप ही दिल मल्लो मल्ली करेगा कि हुण समोसे भी पैक करा लिए हुण मना ए वी कर लिए हैड ऑफिस फोन नंबर नोट कर लो तुसी तां कि तुसी लाइव केटरिंग वास्ते ऑर्डर करना होवे तां नंबर थोड़े कोल होवे 905-799-2616 नंबर है जी गिल स्वीट फैक्ट्री वाले का 2131 विलियम्स पार्कवे यूनिट नंबर 3 ब्रैम्पटन विखे लोकेशन है जी तो इस लोकेशन से जाके तुसी ऑर्डर कर सकते हो तो अपनी जी केटरिंग करानी है वो वधिया वधिया करवाई जा सकती है हेलो जी सत श्री अकाल 1695
1: चांदनी
0: रात चांदनी रात
1: अच्छा ये पता की पिछले साल सेंचुरी ऑफ द सॉन्ग सी पाकिस्तानी अपना फिल्म विच
0: ओमकार होम्स पॉल ग्रेवाल रेनोवेशन काम करके देंदे ने जी इंक्लूडिंग द ड्रॉइंग्स गार्डन स्वीट्स बनवाने होन लीगल बेसमेंट बनानी होवे अपार्टमेंट स्पेशलिस्ट ने है कंप्लीट कर चुके ने ओवर 20 गार्डन स्वीट्स इन 2025 बिल्ड कर देने कस्टम होम्स कोई

वेलकम बैक जी ट्यून कीता होया देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो प्रोग्राम ते मैं हां थोड़ी अपनी होस्ट ते दोस्त थोड़ी अपनी मेजबान ग्लोरिया वेलकम दूजे घंटे दे विच स्वागत स्वागत स्वागत 2:04 हो चले ने साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक एंड एंजॉय करो बस और की

तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मोहब्बत सी लगती है। पहले सही सोचा था, अब सोचने लगे हैं, पहले नहीं सोचा था अब सोचने लगे हैं। जिंदगी के हर लम्हों में तेरी जरूरत सी लगती है, और ये रातें क्या दिन क्या, हर हर लम्हा पल

0: अच्छा झूमर खेडी जा ते झूमर पाई जा, ये बहुत ही खूबसूरत पल जेड़े अपने लाइफ पार्टनर दे नाल तुसी जी रहे हो। मॉर्गेज की गल की असी अपलायंसेस की गल कर लेने, फर्स्ट टाइम होम बायर इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय अपलायंसेस, एक ऐसी जगह तो जिथे रिलायबिलिटी इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, सब तो पहला रिलायबल कस्टमर सर्विस देना इन्हों का मोटो है। कितने भी थोड़ा कितने ना कि कोई गुंजाइश होंगी है कि हाँ ये अपलायंस मेरे घर के लिए ठीक रहेगा, मेरी नीड्स एंड वॉन्ट्स के लिए रहेगा ठीक, तो फिर गाइडेंस अगेन गाइड बहुत अच्छा करेंगे। मनजीत सिंह के नाल असी गलबात करन जा रहे हैं जी, अपलायंस जंक्शन तो साडे नाल जुड़ चुके हैं, इन्हों तो जानते हैं कि आज वीकेंड की डील्स कहड़ियां लेके आए हैं साडे स्रोतियां वास्ते। जी ओवर टू यू मनजीत जी।
1: थैंक यू सो मच ग्लोरिया जी, तो प्रोग्राम सुनते सारे स्रोतों मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल जी। तो इस वीकेंड दी स्पेशल डील्स ने, सब तो पहले जेड़े भी फर्स्ट टाइम होम बायर ने जी या फिर तुसी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, 5 के 5 अपलायंसेस का प्रीमियम कॉम्बो है जिसे 36 इंच का आइसन वाटर डिस्पेंसर आता, डोर वाला फुल साइज फ्रिज है, ग्लास टॉप का इलैक्ट्रिक स्टोव है, कन्वैक्शन से एयर फ्री ओवन के नाल बिल्ट इन स्टेनलैस स्टील की डिशवाशर है विद फ्रंट लोड का स्टेनलैस स्टील कलर का वाशर से ड्रायर का पेयर है, $6500 की वैल्यू के 5 प्रीमियम स्टेनलैस स्टील अपलायंसिस का कॉम्बो है जिहड़ा कि सिर्फ $3999 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। जे तुसी अपना किचन रेनोवेट कर रहे हो बिल्ट इन अपलायंसिस दे विच जे डील देख रहे हो तो अप टू 35% डिस्काउंट बिल्ट इन अपलायंसिस दे उपर अवेलेबल है जिहदे विच किचन एड, जेनियर, वर्लपूल, मेटैग, सैमसंग, एल जी, बॉश, इलैक्ट्रोलक्स ते जीई वर्गे ब्रांड्स अवेलेबल ने। जिहड़े भी कस्टमर इस टाइम लॉन्ड्री सैक्शन च डील देख रहे हैं फ्रंट लोअर का स्टेनलैस स्टील कलर का अल्ट्रा लार्ज कपैसिटी का सैमसंग ब्रांड का वाईफाई कनैक्टिविटी वाला वॉशर ते ड्रायर का पेयर है जिहड़ा कि $2200 की प्राइस तो घटा के $1499 च अज शाम 7 बजे तक अपलायंस जंक्शन से लगा सकते हैं। तो लास्ट के साडे टीवी सैक्शन च 98 इंच 98 इंच का सैमसंग का LED स्मार्ट 4K टीवी $3500 की प्राइस तो घटा के सिर्फ $1899 $1899 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस जंक्शन से लगा सकते हैं। 6 मंथ च पेमेंट करनी है, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। नंबर टू कॉल है जी 905-450-0054-905-450-0054 अपलायंस जंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अपलायंस जंक्शन से गेड़ा लाना बिल्कुल ना भूलो जी, इन्होंने 2 लोकेशन अपनी खोलनिया ने थोनू सिर्फ सेवावां देने वास्ते। सो बने रहो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो प्रोग्राम के नाल, बड़ी ही छेती दिन वज जाने ने ते बस 1 घंटा रह जाना थोड़े ते मेरे साथ दा, लेकिन उस तो पहला गीत संगीत चलना चाहिए, गल्लां बातां चलदियां रहनियां चाहीदियां ने क्योंकि साडा प्यार थोड़े नाल बहुत ज़्यादा है। सो इंजॉय द प्रोग्राम, 4 बजे तक थोड़ा ते मेरा खूबसूरत साथ बनया होया।
2: चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: भाई साहब एक मिनट, क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं। आप थोड़ा बाजा बजाएंगे हैं, पैसे बाद में।
1: देखो हाउ नेचुरल दिस, ही कैन ओनली डू इट। किन्ने नेचुरली, ये तो जिन्हों नहीं भी प्यार होएगा वो भी कह देगा कि हाँ है मेनू प्यार। व्हाट अ ब्यूटी।

3:58 ऑन द स्टूडियो क्लॉक जान दा वेला हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें भी साडे श्रोतियां ने प्रोग्राम सुनिया, आवाज सुन के तुसी ग्रैंड होम फर्नीचर ते पहुंचे, शुक्रिया दिलों दिलों दिलों, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवनिंग अ लाइवली वन। सच दसा तां जदों 3 घंटे दे प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल मुखातिब हो जानी है ना ऑन एयर आके तां रूह खुश हो जाती है। बाकी मैं तैनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखेल दी चिनक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी या खोरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमई लकीर बन के खामोश तेनों तकदी रवांगी। पर मैं मिलांगी जरूर, मैं तेनों फिर मिलांगी। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय कैनेडा डे, एंजॉय द समर।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग 7:02 हो गया जी रेडियो अंदाज तुसी ट्यून कर चुके हो चलो एम 5:30 ते रेडियो अंदाज दे विच मैं थोड़ी होस्ट पर हाजिर हो चुकी हाँ मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नू खुशामदीद एंड स्वागतम

एक कायनात होती है, एक मुकम्मल मुख्तसर जुबान है जब आंखों आंखों में बात होती है। बात नजरों की चली तो फिर दूर तलक जाती है, क्योंकि इनकी भी एक मुख्तलिफ जुबान होती है, बशर्त है इन्हें पढ़ने और सुनने वाला समझने वाला होना चाहिए। तो पेशे खदमत है एक खूबसूरत गजल जिसे आवाज दी है गुलाम अली ने।

जुबां खामोश क्यों है, ये आंखें आज फिर नम क्यों है, जब तुझे कभी भी पाया ही नहीं है तो फिर आज खोने का गम क्यों है। माहौल गुमसुम हो तो इंसान भी उस माहौल में गुमसुम सा हो जाता है, मगर उस वक्त चाहने वालों को अगर किसी का इंतजार होता है तो बस किसी अपने का। अब आपकी नजर पुरसोज, पुरनूर, दिलकश आवाज जगजीत सिंह की।

प्यार करना सिखा दीजिए, मुझको मुझसे मिला दीजिए, दर्द दिल का जरा कम तो हो कोई ऐसी भी दवा दीजिए, रह के खामोश मेरे ऐ सनम यू ना सजा दीजिए, मेरी तिश्नगी को मोहब्बत का समंदर बना दीजिए। समीन रंगों की इस महफिल में कुछ रंग बेरंग भी हो जाते हैं, तो आइए कुछ ऐसे ही अंदाज में गाई हुई एक खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूं, जिसे अपने दिलकश आवाज के साथ नवाजा है लता।